0: अब मैं लता की तारीफ करूं? ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है।
1: हमें वो पुराने दिन जैसे जैसे लता ने कहा कि पुराने दिन याद आते हैं कि हम जब ट्रेन में सफर करते थे तो ये भी चली जा रही थी और मैं भी चला जा रहा था, न ये हमें पहचाने न हम इन्हें पहचाने, ये हमें देख रही थी मैं भी इनको देख रहा था। और फिर वो उतरी एक जगह बॉम्बे टॉकीज जाना था तो ट्रेन से उतरी तो मैं भी वहीं उतरा क्योंकि हमारे भाई की कंपनी थी भाई और वहां पहली मरतबा लता जी गई तो वो मुझे देख रही मैं इनको देख रहा हूँ। वो तांगे में बैठी मैं भी तांगे में बैठा तो मेरे को देखती है। अब वो तांगा चला तो मैं भी चला साथ में, दोनों तांगे एक जगह पहुंचे बॉम्बे टॉकीज, फिर वो उतरी तो फिर मुझे ही देख रही है। बोली कौन आदमी है वो समझ में फॉलो कर रहा हूँ। मैं डर गया, मैंने कहा मैं भी सीधा अभी सीधे जाके वहां खेमचंद प्रकाश जी जो हमारे गुरु जी थे वहां जाके बैठ गई तो कुछ बोला होगा कि देखिए ये तब से चले आ रहे पीछे कौन है। तो खेमराज जी ने बोला करे बेटी ये किशोर है अशोक का छोटा भाई। तो वहां हम लोगों की मुलाकात हुई।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिड़के बोलना है, कुछ भी हुआ चिड़के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अपने आप को आज देखते हैं, हर रोज कुछ बातों को हमने एक ही तरह से रिएक्ट किया और करते करते वो मेरी आदत बन चुकी है। आज एक नया तरीका, अ न्यू वे ऑफ रिस्पोंडिंग, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मुझे खुशी, सेहत और सुंदर रिश्ते देगा, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो मेरे लिए कंफर्टेबल एंड रॉयल होगा। आज अपनी किसी एक आदत, अपने किसी एक रिएक्शन को चूज करते हैं एंड देखें अपने आप को कि आज उसी परिस्थिति में अपने आप को एक नए तरह से रिस्पॉन्ड करते हुए देखें। धीरे धीरे अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नया पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो रहा है। दिस इज द पावरफुल बीइंग।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो।

0: अजी सुनते हो?
1: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
0: क्या सुन रहे हो?
1: रेडियो पुनेरी आवाज।
0: ओ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकता है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

किसी ने खूब कहा है, अच्छी बातें पढ़ने, देखने और सुनने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक सुशील, और ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए जुड़े रहिएगा दोस्तों रेडियो शून्य से 90.4 आवाज तुमचा।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन, कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद रामा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा questions मुझे लगता उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई विल अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो। यू सी, व्हेनेवर देयर, नो, इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो, इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीजें हमें जीवन में मिली हैं, लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली है उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर में ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought आएगी
0: अगर ये नहीं हुआ
1: तो। अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा

0: थॉट. तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माई नेक्स्ट थॉट will automatically be in pain. Then the next thought will automatically be in pain. And that's why we say, if today is in pain, and aaj usko address nahi kiya, to tomorrow will automatically still be in pain. Aap kitna bhi sochte jao, ki bahut achha ho jayega, bahar achha ho jayega. Lekin yahan to phir bhi dard create hoga.
1: Nahi, to ye kaha jata hai ki sapno mein rehna chahiye, ya sapne lene to chahiye kam se kam. So again, I just want to know ki whether it's a right personality, right way of looking.
0: Escaping from the present. Hmm. What is, you know, fantasizing bahut zyada bhavishya ke bare mein. Escaping from the present. So how far would that be beneficial for me? Again, main energy, main apni wo thought power use kar raha hoon kuch aisi cheez ko create karne mein jo ki mere control mein
1: है ही नहीं.
0: मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये वाला पल है और इस पल में मेरी स्थिति, ये मेरे कंट्रोल में है. इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं.
1: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो, क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
0: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ. आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा. सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज. आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे. लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
1: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है.
0: खुशी देनी है, वो सिचुएशन आ जाएगी. लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी, तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
1: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका.
0: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए. सी, अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड. समवन वेरी ब्यूटिफुली सेड एट द एंडिंग फेज ऑफ देयर, यू नो, दिस पर्टिकुलर बर्थ. They said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. हम पूरे जीवन बिताते हैं उन बातों के बारे में सोच के, चिंता करके, जो actually हुई नहीं. जब वो होगी तब देखेंगे ना. Why do I create it beforehand? तो फिर हम कहते, मैं इसलिए चिंता करता हूँ because I care. I worry because I care. तो हमने worry और care को जोड़ दिया. Care तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और worry फियर की शक्ति है. तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता. दीज आर टू एनर्जीज.
1: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर.
0: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता. दूसरा जो आपने कहा, अचीवमेंट, अचीव करना है. वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग. लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है, उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट. यू नो, वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक
1: स्टिमुलेंट
0: है, वो उनको एक किक देता है. समटाइम्स इट कुड बी recognition, औरों का अप्रूवल, औरों से recognition. Sometimes it could be just the realization, हो गया, ये मेरे से ये भी हो गया. या sometimes it is काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है. तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो, टिक, चेकलिस्ट होती जाती है. ये हुआ, अचीव किया. जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया. ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, पर ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है. तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट. सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी टाइम, एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी. तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट. उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है. अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारी आ जाती. दे अचीव अलॉट क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है. लेकिन खुशी, दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स दैट दे नो बेस्ट कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट, वो काफी
1: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग, एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब,

0: वंडरफुल. आई थिंक
1: और वो कहीं ना
0: समवेयर
1: कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, क्यों ना, क्योंकि वो एक संस्कार
0: और
1: बन
0: वो जब
1: गया
0: वो नहीं मिल रहा हो तो तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते
1: और
0: हैं.
1: उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. दिस इज वेर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी
0: अपने
1: फैमिली पर है,
0: रिलेशनशिप्स में.
1: चाहे वो,
0: यस
1: क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स. एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आर डिजायर्स. एवरी वन, वी ऑल से कि इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है. आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा. आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी. आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल. आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम. और टाइम मिल जाए ना, मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार तो होते पूरी भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
0: और बड़े होते जाते
1: और
0: हैं.
1: भी लंबी होती जाती, क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सटल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कंप्लीट. यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू, आई विल बिकम कंप्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता, आई द सेल्फ
0: इज ऑलरेडी
1: कैन नॉट बी कंप्लीट बाय एनीथिंग आउटसाइड, आई एम ऑलरेडी कंप्लीट. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं
0: तो हम
1: कंप्लीट
0: फील
1: हो
0: क्यों नहीं
1: जाऊं.
0: करते, यू नो, हम फील कंप्लीट क्यों नहीं करते अगर हम हैं, यू नो, लाइक इफ वी अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट. तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
1: बिलीफ सिस्टम, क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है,
0: बिलीफ
1: बिलीफ पर.
0: सिस्टम पे.
1: तो अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये
0: हाँ
1: होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, तो देन आई विल फील लाइक दैट ओनली, आई विल कीप लुकिंग फॉर
0: लेट्स
1: इट.
0: ट्राई टू चेंज दैट एंड से दैट आई एम
1: यस,
0: ऑलरेडी फुल.
1: आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम ब्यूटिफुल.
0: बट हाउ विल आई क्रिएट दैट बिलीफ सिस्टम नाउ
1: आई
0: बाय
1: क्रिएट इट,
0: रेनफोर्सिंग इट
1: आई
0: नाउ?
1: क्रिएट, अभी हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी. अब इसको क्या करना है, इस बिलीफ सिस्टम को जीवन की यात्रा में लेके चलना है. जैसे ही कोई थॉट आए, ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इमिजिएटली स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ,
0: तो
1: मैं
0: अच्छा
1: तो
0: तो
1: आई एम तो
0: मैं
1: ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस. हाँ ये हो, वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है. एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड, क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार
0: लेकिन वो
1: नहीं हो
0: जब हो
1: सकता.
0: रहा होता है तब तो वी फील को, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, ओ वी हैव क्रिएटेड दैट थॉट कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते
1: लेकिन
0: हैं.
1: उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट करके आता है, अब ये होगा देन आई विल फील गुड. सी, जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी. तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें, देन आई विल फील गुड. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड. लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग आई
0: आई
1: डोंट नो.
0: एक्सपेक्टेड देन, यू
1: एंड
0: नो.
1: देन इट्स नॉट ओनली ऑन यू, नाउ आई एक्सपेक्ट कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छे तरह से व्यवहार करेंगे. हाउ फार इज दैट इन माई कंट्रोल?
0: एक बार मेरा एक बिलीफ सिस्टम ये रेनफोर्स हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं फील गुड करूंगी, वही हुआ तो अब हर जगह यही चलेगा. तो
1: एब्सोल्युटली.
0: अगेन आई थिंक इट कैन, वी कैन रिवर्स इट. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, हाउ टू डू दैट. लेकिन उससे पहले एक थॉट पावर की जब बात होती है कि वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, यू नो, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है. आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन, यू नो, गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ, यू नो,
1: डाउट,
0: डाउट. एंड इट हैपन्स एंड पीपल आर डूइंग इट नाउ. आई फील लाइक इट्स सो मच इन थिंग नाउ,
1: ट्रू.
0: बट देन एम आई एबल टू लिव इन माई प्रेजेंट देन?
1: इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर फीलिंग दैट टाइम. सी, Some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good.
0: I tried this with myself. I was not able to achieve this.
1: Because once we understand thoughts create destiny, तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीजों के लिए यूज करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो, आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
0: सपोज
1: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना, ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन, इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो जब नहीं होता, आई गो एब्सोल्युटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील, एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट्स की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी, विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना, थ्रो दिस एनर्जी आउट इनटू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है, विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाए, एक तो अंदर और एक तो बाहर. काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाए, एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमजोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू इस पूरी सीरीज में, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहे, हम शक्तिशाली रहे, ताकि कुछ भी हो जाए, आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
0: तो अगर तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
1: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दे, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दे, लेकिन लिविंग इन द
0: प्रेजेंट,
1: ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी. यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है,
0: उसी
1: किसी तरह वो गोल पूरा हो जाए.
0: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते. अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर.
1: नहीं, और क्या होता है वो गोल को, क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे. नाउ इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रिले, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू एंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
0: वो
1: अच्छा होने वाला है, क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
0: गुड, वेरी गुड.
1: लाइट लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य, भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाए प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाए तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है.
0: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी. सपोज आज मैं ठीक हूँ, लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ. यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को.
1: हर सिचुएशंस देखो आने वाली है, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं.
0: अब क्या होगा,
1: अब क्या होगा, अब एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी. ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है? हम कहते हैं ना, एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म. क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
0: हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है. हर बार कोई सिचुएशन आते ही हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं. तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक. शिवानी, थैंक यू सो मच. और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर है 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा. स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. एक्चुअली वो प्लानिंग करना एक दिन के लिए बंद करके देखें, फिर अपना अनुभव हमें भी लिखें और खुद लोगों के साथ भी शेयर करें और खुद समझें भी. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो। चल, चल।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: उड़ेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। ओम शांति। जिंदगी जीते जीते सचमुच एक ऐसे मोड़ पर आ गए थे जहाँ हीलिंग की जरूरत थी, जहाँ मन करता था कि किसी ना किसी तरह जो मुश्किलें आ रही हैं वो ठीक हो जाएं, और उसका प्रोसेस ये समझ में आया, मेडिटेशन या ध्यान, उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ गई, और फिर ये भी तलाशने की कोशिश की कि क्या है ऐसी बात, क्यों हम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। जब एक बार उन कारणों को जान लिया तो फिर उन्हें दूर करना भी अपने ही हाथ में था। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर तसल्ली से और अच्छी तरह से ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेडिटेशन कैसे की जाए, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। बिल्कुल क्लियर है, बहुत से हमारे दर्शक जो हैं कोशिश भी कर रहे हैं, बहुत एफर्ट हो रहा है काफ़ी टाइम से, ध्यान का जो इम्पोर्टेंस है जब समझ ली मेडिटेशन का तो उसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान है कि लगता ही नहीं है ना। कई बार वही थॉट्स वेवर होते जाते हैं, मुश्किलें आती जाती हैं। एक बार आज इस पूरी कड़ी में हम ये साथ मिलकर तलाशते हैं कि कैसे करें ध्यान।
1: सबसे पहले शायद हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या मुझे मेडिटेशन की आवश्यकता है, एंड रियली पुट इट डाउन कि कौन सी चीज़ आप अपने अंदर क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं जिसके लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तब तक उसकी तरफ हमारा जो इंटरेस्ट है या जो एंथुजियाज्म है वो बिल्डअप नहीं होगा। हम दो दिन ट्राई करेंगे फिर गिव अप कर देंगे, कोशिश करेंगे लेकिन और ही थॉट्स में उलझे रहेंगे क्योंकि हम क्लियर होकर नहीं बैठे हैं तो कि हमें क्या इसकी जरूरत है, और दूसरा इसको करने से मुझे क्या चाहिए। ड्यूरिंग द डे आई कैन सी कि मेरे वूंड्स कहाँ पर हैं, कौन सी चीजें जो मुझे थोड़ा सा दर्द थोड़ा सा दुख अनुभव कराती हैं, औरों की नहीं। अगेन इम्पोर्टेंट, इट्स हियर, तो ये नहीं देखें कि ये मुझे दर्द, लेकिन मेरे अंदर के कौन से संस्कार हैं जो मुझे बार बार तकलीफ देते हैं, जिनको मैं कोशिश करती हूँ फिनिश करने के लिए तो वो थोड़े दिन के लिए फिनिश हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं से फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे संस्कार हैं, क्योंकि राजयोग मेडिटेशन हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर देती है, वो भी जड़ से, यू नो, मूल

0: एकदम रूट से जैसे उसको उखेड़ देगी। एंड जो चीजें आज तक हम समझते आए कि ये मेरी आदत है, ये नहीं चेंज हो सकते, वो चेंज हो जाती है।
1: हो ये रहा है एक्चुअली कि समझ में तो आ रहा है कि यही चेंज कर, क्योंकि जैसे ही ज्ञान हमें मिला है तो ये समझ में आ गया कि ये चेंज करने ही पड़ेंगे और चेंज मैं खुद को ही कर सकता हूँ।
0: तो वो एक बार क्लियर आ गया कि मुझे चेंज करना है एंड दिस इज द टेक्निक जो इसको जड़ से चेंज कर सकता है। नाउ व्हेन आई टेक आउट टाइम टू सिट, आई विल रियलाइज कि मेरा वो टाइम कितना वैल्यूबल है। एक तो हम वी आर सो शॉर्ट ऑफ टाइम सारा दिन में, तो अगर मैंने 15 मिनट निकाले हैं या आधा घंटा निकाला है तो मेरा वो आधा घंटा कहीं ऐसा ना हो कि वो ही ऑर्डिनरी थॉट्स में चला जाए जो वैसे भी सारा दिन चलते हैं। तो इट्स लाइक आई गॉट एन अपॉइंटमेंट विद माई सेल्फ एंड विद गॉड फॉर हाफ एन आवर, आई डोंट हैव मोर टाइम देन दैट, एंड देन आई डिडंट मेक यूज ऑफ द अपॉइंटमेंट। तो ये तो अपने साथ बहुत चीटिंग हो गई। तो जब बैठते हैं करने तो सबसे पहले, बैठने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होती है, या कहीं रात को सोने से पहले जो अपनी मेंटल प्रेपरेशन होगी, टू टेल माई सेल्फ कि कल सुबह मेरी अपॉइंटमेंट है।
1: और क्या डिस्कस करना है?
0: जैसे अगर किसी बड़े व्यक्ति से अपॉइंटमेंट हो तो हम कभी लेट नहीं पहुंचेंगे। तो मुझे एक बात याद आती, कुछ दिन पहले एक बहन ने फोन किया बैंगलोर से और वो कहती मुझे बात करनी है एंड आई वाज इन समथिंग एल्स। तो मैंने कहा बहन बाद में बात करते हैं, आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। कहती मुझे सिर्फ 5 मिनट दो बस। आई सेड चलो 5 मिनट। शी टुक दोस 5 मिनट्स एंड उसने 5 मिनट से ऊपर 1 मिनट नहीं लिया। 5 मिनट में उसने अपनी 4 प्रॉब्लम्स पूछ ली। शी वॉज सो फोकस्ड, शी सेड मेरी ये एक प्रॉब्लम है, इसका आप आंसर बताओ, एकदम शॉर्ट में बताओ, ये फिनिश हुआ। शी डिड नॉट गो अबाउट अच्छा ये ऐसे ऐसे। दैट वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। आई सेड इसको 5 मिनट मिले थे एंड शी मेड द मोस्ट ऑफ दोस 5 मिनट्स। शी न्यू कि उसके पास 6ठा मिनट नहीं है। शी डिड इट सो वेल। यही मुझे करना कि मेरे को वो 15 मिनट मिले अपने साथ और परमात्मा के साथ, और मैं वो 15 मिनट वेस्ट कर देती हूँ। ऑफिस में ये हो गया, इसने ये कर दिया, आज इससे वो बात करनी है, 15 मिनट खत्म।
1: क्योंकि कहीं ना कहीं हमने प्रिपेयर नहीं किया होता। दैट्स वेरी ट्रू।
0: टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट टाइम इज वेरी इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम रात को पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि कल सुबह जो टाइम भी हम अपने लिए फिक्स करते, जैसे हम अमृत वेलक करते 4 बजे, लेकिन हर एक अपनी पर्सनल रूटीन के हिसाब से, लेकिन रिमाइंड योरसेल्फ कि आई हैव एन अपॉइंटमेंट एंड मेक श्योर कि हम उस अपॉइंटमेंट के लिए टाइम पे पहुंचते हैं। क्योंकि हम जितनी प्रायोरिटी उस चीज को देंगे, अगर वो हमारे लिए मेडिटेशन एक ऐसी चीज है कि टाइम मिला तो कर लेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, दैट मीन्स मेरे लिए वो प्रायोरिटी नहीं है। तो अगर प्रायोरिटी नहीं होगी तो उससे जो प्राप्ति मुझे मिलनी है वो भी नहीं होगी, क्योंकि मैं कभी करूंगी कभी नहीं, कभी 5 दिन बीच में बीत जाएंगे, कभी 10 बजे टाइम मिला तब किया, कभी 6 बजे मिला तब किया। तो इट्स लाइक क्या इम्पोर्टेंस है उस चीज की फिर मेरे लिए। तो और इसलिए अगर इम्पोर्टेंस समझ कर नहीं बैठे तो बैठने के बाद भी इम्पोर्टेंस
1: समझ में नहीं आती।
0: तो फिक्स योर अपॉइंटमेंट एंड फिक्स द एजेंडा फॉर द अपॉइंटमेंट कि कल मुझे किस चीज पर वर्क करना है, मुझे परमात्मा से कौन सी शक्ति लेनी है, मुझे क्या चाहिए कल सारा दिन के लिए। और हम मोस्टली क्या करते हैं कि रात को कुछ ना कुछ लिख कर सोते हैं कि हमारे क्या, मेरी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल आ रही है या कौन सा संस्कार है जो मुझे तकलीफ देता है, सो दैट आई एम वेरी क्लियर व्हेन आई सिट ऑन इट नेक्स्ट मॉर्निंग। और दूसरा, जैसे कि हमने पहले भी देखा था, फिक्स्ड प्लेस, एक स्थान अपने घर में उसको बनाएं जो आप हमेशा उसी जगह पर बैठे एंड प्रेफरेबली उसी टाइम पर बैठे। और दूसरा, जब हम बैठे, जैसे कोई भी गेम हम खेलते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे मेडिटेशन करने के लिए भी हमें अपने अंदर के लिए, माइंड को वर्क करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस प्रोसेस में अभी जो मैं करने जा रही हूँ, कुछ एक थॉट्स बीच में आएंगे जो मुझे तंग करेंगे, आई नो दैट बिकॉज मैंने कितनी बार खेला है और वो बार बार आती हैं। तो मुझे पहले ही इधर बताना पड़ेगा द रूल ऑफ द गेम, दिस एंड दिस एंड दिस इज नॉट अलाउड। सो व्हाट इज नॉट अलाउड? चिंता, चिंता ये अलाउड नहीं है। कल सारा दिन में क्या हुआ इसके बारे में सोचना, ये अलाउड नहीं है। किसी और के बारे में बैठकर चिंतन करना, जजमेंट पास करना या क्रिटिसाइज करना, ये अलाउड नहीं है। इस समय अगले आधे घंटे के लिए यहाँ पे ये अलाउड नहीं है। तो अगर कोई थॉट्स बीच में आते भी हैं, डू नॉट इंगेज, उनके साथ ही

0: बैठकर उनमें उलझ नहीं जाए. एंड थर्ड इज नाउ प्रिपेयरिंग माय स्टेज. बिफोर आई स्टार्ट द मेडिटेशन आई हैव टू प्रिपेयर माय स्टेज एंड द स्टेज इज ऑफ अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. मुझे साक्षी दृष्टा, जो आज तक हम देखते आए कि हमें साक्षी होकर हर चीज देखना है, वो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है. साक्षी मुझे दो चीजों से होना है, एक जो बाहर हो रहा है उनसे साक्षी होना और एक जो अंदर होना है.
1: तो आई हैव टू सी, आई हैव टू वॉच मी, ये जो बैठी हूँ मैं ध्यान में, वो भी देखना है.
0: सबसे पहले उसके लिए हम बाहर वाले वर्ल्ड से कैसे साक्षी होंगे कि आई लुक एट माई सेल्फ कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, जो हम आज दिन तक भी देखते हैं कि ये सृष्टि नाटक रंगमंच है. एंड लुक एट माई सेल्फ सिटिंग इन द ऑडियंस. मैं ऑडियंस में हूँ, बाकी सब लोग परफॉर्म स्टेज पर है. एंड बिल्कुल आप एक सेकंड के लिए उस सीन को विजुअलाइज करके देखें कि आपके जितने भी परिचित लोग हैं जिनके साथ आपको सारा दिन इंटरेक्ट करना पड़ता है, आप ऑडियंस में हैं और वो स्टेज पे हैं. एंड जस्ट लुक एट देम परफॉर्मिंग कि वो स्टेज पे आ रहे हैं, स्टेज पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, स्टेज से जा रहे हैं एंड हम उनको बहुत प्यार से सिर्फ ऑडियंस में बैठ कर देख रहे हैं. हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है,
1: परफेक्ट. द मोमेंट वी एक्चुअली बिकम एन ऑडियंस, वी रियलाइज कि इनका यही पार्ट था, चाहे वो नेगेटिव ही लग रहा है उस वक्त, क्योंकि हमारी जिंदगी का हिस्सा थे तो इसलिए वो नेगेटिव थे.
0: जब हम वहां होते हैं तो हम बहुत उलझ जाते हैं और हम उनके पार्ट पर क्रिटिसिज्म या जजमेंट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन जब हम यहाँ से बैठ कर हर एक का पार्ट देखते हैं, तो आप देखो कभी भी प्ले देखने जाए या मूवी देखने जाए तो उसमें तो हर तरह के पार्ट होते हैं, बट वी फील के हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है. दैट मेक्स द मूवी इंटरेस्टिंग. अगर उस मूवी में सब लोग परफेक्ट वाला रोल प्ले करें तो वो मूवी का तो मजा ही नहीं है. तो जब हम ऑडियंस में बैठकर देखते हैं हमें वो मूवी कितनी अच्छी लगती है. तो यही अगर हम अपने जीवन में भी ऑडियंस में बैठकर देखें या ऐसे होकर देखें, एंड एवरीबॉडी इज प्लेइंग द पार्ट एंड यू नो कॉन्शियसली वो थॉट क्रिएट करें कि हर एक जो अपना पार्ट प्ले कर रहा है
1: वो परफेक्ट कर रहा है,
0: उसको वो ही रोल मिला है.
1: एक रियलाइजेशन हो जाता है कि इट्स जस्ट अ पार्ट. आत्मा तो, हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा तो इतनी सुंदर है, बट बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग वी स्टार्ट डोंट स्टार्ट हेटिंग द विलन.
0: एब्सोल्युटली, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट हेट द विलन, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द एक्टर इज डिफरेंट एंड द रोल इज डिफरेंट. बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस नहीं है. अब सोल कॉन्शियसनेस हो तो ये समझ में आ जाए आत्मा एक्टर है और रोल वो है जो इस समय स्टेज पर प्ले कर रहे हैं. और एक्टर कैसा है? एक्टर तो ब्यूटीफुल है, एक्टर प्योर है, परफेक्ट है, कंप्लीट है. लेकिन हमने एक्टर को रोल के साथ मिक्स कर दिया तो ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं. वो उनका रोल है अभी के लिए वो जो कर रहे हैं.
1: In fact, then we can actually see ourselves also. I can actually visualize doing that.
0: Absolutely. So we start accepting as we are. जो acceptance की बात है वो यहाँ से बैठकर accept करना easy है. उलझे जब होते हैं उसके अंदर तो accept करना possible नहीं. तो जब meditation करने बैठते हैं we can really prepare this, क्योंकि ये preparation हमें सारा दिन में बहुत help करती है. क्योंकि meditation means हर एक thought जो हम create करते हैं वो हमारे subconscious में feed हो जाती है and वो फिर सारा दिन में हमारे ऊपर work करेगी. तो stage पर actors को देखें and give yourself the thought कि हर एक जैसा कर रहा है he's doing his part very very well. किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है. ये अपने आप को बताना होगा, इनमें से किसी को भी चेंज की जरूरत नहीं है. तो उससे क्या होगा, जब हम साक्षी होकर देखेंगे तो हमें भी उनका पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा. क्योंकि आपने जजमेंट करना बंद कर दिया और उनको समझना शुरू कर दिया. जब यहाँ होते हैं प्ले में तो जजमेंटल बन जाते हैं और जब साक्षी होकर देखते हैं तो एम्पथी आ जाती है. समझ में आता है कि व्हाई आर दे डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाई आर दे सेइंग व्हाट दे आर सेइंग. तो उससे क्या होगा, जब मैं अपनी माइंड की प्रिपरेशन उस तरह कर लूं तो सारा दिन में वो मुझे अफेक्ट भी नहीं करेंगे. बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और वो जैसा कर रहे हैं ठीक.
1: इनफैक्ट एवरी टाइम वी विल इंटरैक्ट और कोई प्रॉब्लम शुरू हो गया, आई थिंक द ड्रामा कैन कम बैक टू अस.
0: एक बार मैंने आउटर वर्ल्ड से डिटैच हो गया, अब मुझे इनर वर्ल्ड से

नहीं रो बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मित्र मेरा बेटा ने